ये तो है खुशकिस्मती मेरी, ये डर है वक्त कुर्बानी, मोहब्बत आएगी मेरी। आप आंखें बांध लीजिए, आरज़ू है बस यही मेरी। इसी तरह मेरे हाथों को पैरों को जकड़ दीजिए।

जा रही है बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 59 फ्रांक फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैथ उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 59 फ्रांक फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुनने को जा रहे हैं। आज शुक्रवार 14 तारीख अगस्त का प्रोग्राम फ्राइडे फिर 3 अगस्त। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रहे थे आरजे दंकेबल। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी बहो, आप रे को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 15 मिनट व्यतीत हो चुके 9:15। मैं हूँ सुबह शिव गोविंद और जहां तक आप लोग मेरी आवाज को सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को आज का सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन। यहां से लेकर ठीक दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं नई तत्व। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो वो हो सकता है व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 020-363-0008 पर। जावेल 020-363-0008 पर। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे दिन में 3 बजे तक। पनमान दख्त तो मैं 7:03 और यहाँ का फोन का नंबर है 0309-0807 पर आप लोग तार कर सके हर एक काम काज के लिए। उजाला का वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आप

ओम जय अम्बे गौरी, और इस तरह से ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खास करके अनूप जलोता जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने वालों। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग सुनाने वाले हैं, और गाना जो आप लोग सुने गाना

बल यार मुड़ के ना देखो दिल भरू, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। अरे प्यारे सुने वालों, आप हरी को शुभ दिन, और चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी सुनने वालों को हम खिदमत करने वाला हूँ। शुभ दिन, फैन वीकेंड टू खवेंस हमारे तरफ से, जो भी वीकेंड तो हमें करिए प्यार से करिए। मैं तो अनुद कोक एंड कोक सालमाओ।

वेल आज मैं वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ा था, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड बैना वीकेंड या वेल बैना वीकेंड एंड व्हाट खाओ इन द वीकेंड कोकन व्हाट खाओ फंदा खेतन। आज का बनाओ खोई का, पकाओ खोई का, खाओ खोई। एंड आज बहुत गर्म रही

मेरी तकदीर में अपना नाम लिख गई है। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वाले युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए प्रोग्राम को भी बहुत ही प्यार के साथ, संद्रा प्रोग्राम बैठ के सुने प्यार के साथ गाना पेश है।

दिल ये कैसा इश्क है, दिल दिल मेरी ना माने, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो दरहा शहर में जिका जाए भाई आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, करोड़ का दिल, चुराने वाला हांट मिलेस मायटी मुकेश, ओ मेरी हमराही। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं और प्यार के साथ गाना पेश है।

0: जब से तू मिली अन चैन दिल को ना आए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए अमसरम सही, तो उसमें हमारे मामी जी खैरदा भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, खुद मूर्ख मामी जी, और गाना जो आप सुनेंगे तो इस गाना आपके नाम कर देता हूँ। और गाना जो सुनिए यार, गाना इस तरह से, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम खुद मूर्ख अलमाओ फुर्सत में दे तैयार।
1: तू तो चली गई लेकिन मेरा दिल आज भी वहीं खड़ा है जहां तूने आखिरी बार मुस्कुराकर अलविदा कहा था।

और जो गाना हम आपके लिए घुमाना चाहते थे और गाना इस तरह से होना चाहिए। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और खास करके हमारे मामी खैरदा के लिए गाना पेश है।

कर ले प्यार तू कर ले, दिल को सभी से प्यार कर ले, दिल है प्यार करने के हम। और इस तरह से आशा जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, और हमारे प्यारे सुन बलो आज शुक्रवार का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एंड नतुल आकाश बहुत गर्म रही और सिख में दहित, जो भी आप लोग करिए प्यार से करिए। नतुल ड्रिंक टू वेल फील, पानी ढेर पिए यार, बाहर जे भी पानी ले लिए, अगर हो सके तो कोई छाता ले लिया।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रही आज शुक्रवार 14 तारीख अगस्त का प्रोग्राम यही खुद मोरखाल माओ वाल चाहे जो ची आप लोग करते हुई गर्मिया में रेस फॉर सिक्स मिला फैंस बोल्डर में प्रोग्राम बैठकर सुने ट्वी फ्लिखे इन एन क्लब एक कहती पकावे एक कहती उजाला रेडियो सुने है और ये गर्मिया में तू का कर सके है अगर कोई टिप हुई कुछ बताना हो तो बता सके है और तुम हाथ हुई पेड़ों के नीचे जाए बैठे तो था आदमी मन घमिया तोख लगी एक चीज वेल कर सके तू पनिया में कुछ जा खलाइक मगर तो का डिप्लोमा ना है तू नक को दिए सो उमान ओके हमार बात ना सुनी अच्छा की बोली यहां सुभाष बोली सब पनी हमको देखे मैं तो का डिप्लोमा ना है तो नक को दिए या वेल हते स्वरम आई गरम बच्चा वेल हम प्रोग्राम यहां बनाए हमें भी गरम लगे है दस हमें मांग करे भी कहूं कूदे के ओके चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो आलमीर में अलमुंगार भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मोर खालमाओ

कुछ इंतजार खत्म नहीं होते, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। और देखा जाए दरहा शहर में मरीजा भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं और गाना को मांग के है। गाना जो आप लोग सुनेंगे तो अभिजीत की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस तरह से वल दीवाना लेके आया हूँ, मैं भी दीवाना लेके आया हूँ आप लोगों के लिए।

0: अल दीवाना लेके आया है दिल का नजराना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अभी जीत के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुने। उजाला रेडियो का दफ्तर खोले गए हमारे प्यारे सुने लोग, आप लोग तार कर सके, और तार का नंबर है 0304909907 पर आप लोग तार कर सके। गर्मी का मौसम है
1: कि आपकी हर इशारों से मैं समझ जाता हूँ कि आपको क्या चाहिए।
0: यवल छूकर मेरे मन करो।

छूकर मेरे मन को तूने क्या किया इशारा, इशारा से अभिजीत के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो किशोर कुमार और लता जी के आवाज में गाना जो आप सुनिए, और इस गाना पेश करेंगे देखा जाए राजेश भंडार से भी काम कर रहे अमसराम नॉर्थ में वर्क्स एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम बैठ करके सुने हैं। गर्मियों में भाई वह काम करे है वर्क्स यार

बलियर गाता रहे मेरा दिल आयुषरा से किशोर कुमार एंड लता जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जाए हो दौर में आनंद मंगरू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम।

बेलियर ओ मेरे दिल की चैन, और इस तरह से अभिजीत की आवाज़ उसमें गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और आज शुक्रवार 14 अगस्त, और मेरे शहर में जहां पर आज श्रीमान प्रकाश चंद्र का सिंह का जन्मदिन है, भाई जी बधाइयां शुभकामना आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर।

जिंदगी। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, करीबन 20 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, ट्विंटी मिनट फॉर आई लव एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो इस गाना को मांग करने वाली इफोनो की तरफ से प्रकाश के लिए प्यार एंड मोहब्बत के साथ।

कल 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, इस गाना को मांग के थे इफोनो की तरफ से प्रकाश के लिए। प्यार और मोहब्बत के साथ आप दोनों को एक शुभ दिन। एंड यू आर उजाला रेडियो आई बॉय।

तो पुकारे मेरे प्यार आजा। इस तरह से सोनू निगम जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनी, और हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 3 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, और नतुलक हथवर फंदा हेता हेता रहेगा, खूब मोई गर्म रही, और आप लोग जो ची करिए वेल प्यार से करिए, एंड ड्रिंक टू फील वाटर नतुलक, हाँ पानी ढेर पिए यार, या वेल, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। दिन में 12 बजे तक आप लोग को साथ हम देने वाले हैं, कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी को हम खिदमत करने वाला हूं। एंड वीकेंड वाले है तो आप अपना वीकेंड मोई से बिताइए, जो भी करिए यार प्यार से करिए, दुलार से करिए, नहीं तो ना करिए, ये वादा रहा।

प्यार प्यार तूने ये क्या किया, और हमारे प्यार सुने बोलो नाड़े ब्रेक नाड़े रिक्लामा बने कुछ रुख यार, और आप लोग बस सुनते ही जाइए। दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं यावेल हतिस बैन वीकेंड। आप सभी को शुभ वीकेंड, फैन वीकेंड तू खबैंस हमारी तरफ से, अति योग दूर प्यार से।

पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 11 मिनट बजे हो चुके हैं, 11 बजकर 11 मिनट ऊपर अलो ही खुद मोर खालमाओ चलिए प्रोग्राम को भी देखा जाए एकदम मास्टर्स मास्टर कहती थी अनीता प्रोग्राम को बैठ करके सुने ना बैठ कर सुने अपन ओतो में बा सिस अंदर वे एंड बोले बोले लॉयट एंड डाइट बोले उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुने है एंड देश स्पेशल फॉर यू अनीता

बल बलियार फूल भेजा है तुम्हें खतु में, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और देखा जाए ब्रेडा शहर में भी आशरीना भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्ख। तो चलिए आशरीना ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं।

कल पत्थर की सनम मैंने तुझे खुदा जाना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और देखा जाए मानो भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने, मानो गाना मांग के अपने सुनुष्य के लिए प्यार और महा।

इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, बहारो फूल बरसाओ कि मेरा महबूब आया है, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुने वालों। और थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं, या वेल थोड़ा देर और, एंड यू आर उजाला रेडियो है। आई बॉय चलन दे।

वेल तू छुट्टी छुट्टी लेके आ जा बालमा एंड इस तरह से सुधीर शिवदत्त एंड नीलम माता दीन के वंश में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए बॉय का भी प्रोग्राम को सुने बेनुंग में एंड बॉय का खुद

अरे यार ये पर्दा हटा दो, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और देखा जाए अमस्टरडम शहर में तो नहीं इसी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने, और दनहाक में इस खेफ नगम ने भाई लक्ष्मण भी प्रोग्राम को सुने खुद मूर्ख एंड यू आर उजाला रेडियो है। थोड़ा देर तो कौर आप लोग के साथ कल आज एक कोरा सपना मिलल की का बनाओ कोई का खाओ कोई मंथ एट दिस फेल्स द फेल्स वारम बहुत गर्म बा और कोई ना पकाया आज सबके कोई के घरे हड़िया उल्टल बा जब एल खून ब्रोदा ये तो खून बातर दा

वेलियर ओ हजीना जुल्फो वाली, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो है। और करीबन 20 मिनट बाकी रहा 12 बजे में अमसलम सोए, तो उसमें हमारे मामा खैर पारस मुली भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं खुद मूर्ख और देखा जाए। और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो रिया कल्लू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख।

जीना तो इसी का नाम है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे एंड आपकी बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए भाई शहीद गुलजार भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। और चलिए ये गाना तुम्हारे नाम का देता हूँ, आओ सुनिए इस तरह से। ओ वेल या वेल बॉय।

0: सीना बोले मैंने कभी मोहब्बत ना करनी थी, दिलवा तो हरदम हरदम दिलवा के बात है, दिलवा के कसूरबा जो चिक होई दिलवा दिलवा दिलवा के कसूरबा। वेल का करक होई, दिल तो अपना है, दिल तो अपना है आवारा।
1: है अपना
0: और देखे जाए सुतमेर में संत।

है अपना दिल तो ये आवारा और ना जाने किस पर आएगा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, और हम आप लोग से बता चुके कि आज पकावे के कोई रेसिप अंदर ना आए। हम तुम लोग से बता चुके कि वेरवा इतना गर्म बादश आज हमारे जान कोई ना पकाए, कोई ना पकाए और जो कोई कुछ ना पलाए। अरे यार कोई बात ना है, बरोदाह करिए, चाहे भूजल भात बना लिए, चाहे जो चीतू बनाइए वेरवा में, मोई से बनाइए, मोई से पकाइए, मोई से खाइए और अपना वीकेंड तो लोग मोई से बीताइए। जो भी करिए, जो भी करिए प्यार से करिए, नहीं तो ना करिए।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, हम आप लोग से अब धीरे धीरे इजाजत लेंगे। आज का प्रोग्राम यही आशा, जिस तरह से प्रोग्राम को हमने बनाए सजाए, आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले दिनों फिर हम आप लोग से मिलेंगे। अपना शुक्रवार का दिन तो आप लोग मोई से बिताइए, मोई से रहिए, मोई से खाइए, मोई से पिए। और इस गर्म मौसम में बच के रहिए, जो भी करना है सोच समझ के कर लेना।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, आप लोग मौज रहिए और आप लोग अपना दिन मौज से बिताइए और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज़। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिवगोविंद। मौज रहिए, बाय बाय, स्वाय स्वाय।

naam Vinnie op naar Moana Mooi Hitcha, dus ik sla hem over. Laten we eventjes zien en gaan luisteren, ja toch? Hai, dit is wel een goede opname. Sanjana, Express ke saath, ehu rahega yaar. Apan naach ke saath bhi, gana ke saath, maa apan naach ke saath bhi. Toh aiye dekhiye. Jo sam bolat rahi, agar tu feni karega, ki bahut mushkil haiga aapke khati, online ki neke, ki computer computer ke cheez to like na haiga, hoi sake to? Aur tu rahega Danhaag shahar mein, ma tu mange aave. Aur tu kahega tu falak oye fast pass. तू जाने तो कोर्टिंग्स पास कमेंट वाली ओएस फास्ट पास ओए फास्ट पास हमें बोले चाहिएगा हम सदम में हैगा बाय फोर स्टार्ट पास ऐसे हैगा दनहाग शहर में ओए फास्ट पास जब दनहाग में रहेगा और जिनके पास हैगा ओए फास्ट पास वेल हम तो के खुशी करबे यार तो तू आ सकेगा वही दिन जोन दिन तो के आवे के बस नीचर के या तो अतवार के या तो दोनों दिन नतुलिक 29 एंड 30 अगस्तस तू आइए गवोन वहां पे जिया में और तू वहां पे तेर प्लेक कार्ता किन सकेगा मत 50% कोर्टिंग देख ले तो एक वा 50% जो नहीगा देन हां गमेंटे और उजाला मिलके भरेगा वो दोनों मिलके एक एक डील डेक करेगा आधा दोस और अधवा जों तो के भरे के बाद सो तो कितना मकलक तू अपन ओए फास लेके आइए एंड यू कोप दैट गवोन ऑन द डोर

Laatste weekend van augustus, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. दो बजे सांझ के प्रोग्राम शुरू होगा। शनिवार के दिन और इतवार के दिन भी दो बजे सांझ का प्रोग्राम शुरू होगा। सात दागा वो दोर फन 12 uur, नहीं, फन 2 uur in de middag tot 1 uur in de ochtend. En zondag gaan we door tot 12 uur.

ब्रज एफएस पे रहेगा रोशाना भी। तो वही है खाना ब्रज एफएस पे इंटरनल एंड स्कोर ये कार्ट इस साइड बहुत सस्ता हैगा दोस्तों, सस्ता में किन ले 20 तारीख तक रहेगा सस्ता में एकदम दोस्तों, खबोन अपन स्लाख मार दे ओके एंड है मां नेचुरली लग दी तो अंदर ही के तो

और ये गीत जो है ना आप किसी के याद में भी सोच सकते हैं, चला सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए भी ये गीत है। कभी जम ना रहबे देख ले तो दारो उफर खातर में बर मोयर संजय। ऐसन ऐसन कलाकार हम लोग के बीच में आएगा सुनने वालों, और ऐसन ऐसन कलाकार भी वहां आई के ब्रासा फेस्ट पे आपके खाती गाएगा, आपकी मनोरंजन के खाती। और ये कलाकार जो है ना अपने लिए नहीं गाते, कभी नहीं, आपके लिए गाते हैं।

समैया समैया थोड़ा कमती बात हो तो समी गनवा तो जहाँ पे ओवरस्नान करे छा सुजल तो के हम लोग देखे बे लाइव ऑन स्टेज ना तू लग ब्रासा फेस्ट पॉइंट नल तू जाए के स्थिति कर ले अपन कारता इस आयत कारता जोन होएगा बहुत सस्ता दाम में मिलेगा दोस्त तू जाए के खबून किन ले यार रीखल कर ले चिजवा है वदा खिफन है मदान ये दे म्यूजिकांत खेलेगा दमिया भी आई आई आई आई हाई मागनी तो अंदर नतूर्लक एन फन द गेसेलिगस्ते एन फन द गेसेलिगस्ते सांगर्स ऑन

on stage. Rasa Vesper. 29 en 30 augustus. Laatste weekend van augustus. Toke avik pariyar. Kaise tunaiye? Aur kahe tunaiye? Aapan Hindustani ke evenement mein. Tunaiye? Ta kekar face pe jaiye. अगर तू हिंदुस्तानी के इवेंट में ना आइए तो कौन इवेंट में तू मांगे जाए कोरखाती स्पेशल गन्हा शहर में हिला देखो ये हम लोग सबसे बरका सबसे मोई सबसे खसालक इवेंट उजाला के साथ उजाला वहां पे भी बनाएगा लाइव आउटस्टैंडिंग लाइव कार्यक्रम हम लोग बनावे फनाफन ब्रासा फेस्ट गन्हा के बैठाऊ दस जोन हैगा भी रहेगा बैल वहां पे हम लोग के आसपास और बरका बरका आदमी रहेगा नौया बरका बरका आदमी तू समझेगा हमका बोली ला तो जिनके दर्जा हैगा लाओ ऐसे बोली उस सब रहेगा वहां पे बड़ा सा फेस्ट पे और तू भी रही है यार तो हूँ थोड़ो कमती बात है तो क्या आवेक पड़ी और हम तो कह गो ब्रासा दे तू आइये हमें खोज लिए वहां पे हम रहबे हम कहो ना जाबे हम वे पे रहबे यार मिस्टर ब्लैक या तो मोई गाना यार रहेगा भाई चली सुने ई कौन ची हैगा ई के हैगा हम बताई सकेला तो के निजाम वाकिद हुसैन द लेजेंड्स के साथ

लाइव ऑन स्टेज बड़ा सा फेस्ट पर यार तू ये समय कम है तो हम जाए ना जल्दी जल्दी नंद फॉल खंदर आई बोई एक अपना हमारे सही फॉर्मिनेचर्स मुका मुकेश लाइव ऑन स्टेज विद एक्सप्रेस एहू रही गया यार नतुल

आतिफ असलम की आवाज और स्टेशन उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हम लोगों के वेबसाइट आप देखें ujala.nl। नेम ऑन्स ओवरऑल में और डाउनलोड कर ले उजाला के ऐप जो है।

तुझ में रब दिखता है, रूप कुमार राठौड़ की आवाज। रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से गीत को आप सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों। और आपके साथ हम भी सुन रहे हैं।

अमृत संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनेटरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए, यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है। बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से लड़कन निधान सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल की आयु में द्रियन निहंत यार औत। लड़कन जॉनी, शोरशीन, हेलोविस, रॉबी और आयरीन निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतोह के ससुर और सभी लड़कन के नाना, आजा और परनाना। दिमनजोइत का रहने वाला श्रीमान अंद्रे निधान सिंह की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। लड़कन निधान सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल के आयु में त्रियन निहंत यार औत। लड़कन जॉनी, शोरशीन, हेलोविस, रॉबी और आयरीन निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतोह के ससुर और सभी लड़कन के नाना, आजा और परनाना। दिमनजोइत का रहने वाला श्रीमान अंद्रे निधान सिंह की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे इतवार के दिन में 2 बजे से 3 बजे तक। जोंदा खानस्टांड फन 2 tot 3 uur uitvaart centrum Westgaarde के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 1 बजे वोंसदा खानस्टांड 1 uur किए जाएंगे। क्रीमेटोरियम वेस्टगार्डे ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्त फुरजोरखी परिवार निधान सिंह के दुख में शामिल है।

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Eind van de maand, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haagse Hermea, Brazzafest. अबे तू कार्ता किन से कहेगा बहुत ही अच्छा प्राइस में लाख प्राइस में ओके बोल जाएगा अर्ली बर्ड सुनने वालों अगर मतलब बाकी प्राइस जो नहींगा अबे बहुत मोय हैगा तू सस्ता में किन से कहेगा एक आत्रो चौरो हमारे जान अब से लेकर छौरो चौरो आ जाएगा फिर तीन दो सकर मतलब ट्विंट खोकस तसल प्रसी से छौरो रोज आपके पास आएगा समय एकदम सस्ता में कार्ता किने के ब्रासा फेस्ट के खाना ब्रासा फेस्ट पे उन्तना रीखो

Islam, Vinnie Carilla op Namwana Mooie Chat. Dus ik sla hem over. Laten we eventjes hier naar gaan luisteren, ja toch? Hai, dit is wel een goede opname. Sanjana, Express ke saath, ehu rahega yaar. Apan naach ke saath bhi. Gana ke saath, maa apan naach ke saath bhi. To aiye dekhiye. जो हम बोलत रही अगर तू फेनी करेगा कि बहुत मुश्किल हैगा आपके खाती ऑनलाइन की लेके कंप्यूटर वम्प्यूटर के चीज तो लाइक ना हैगा हो सके तो और तू रहेगा दनहाग शहर में मा तू मांगे आवे और तो कह हैगा तू फलख ओ ये फास्ट पास तू जाने तो कॉर्टिंग्स पास कमेंट वाली ओ ये फास्ट पास हमें बोले चाहिएगा Amsterdam में हैगा बाइफोब्लेट स्टार्टपास ऐसे हैगा दनहाग शहर में ओये फार्श पास जे दनहाग में रहेगा और जेके पास हैगा ओये फार्श पास वेल हम तो के खुशी करबे यार तो तू आई सकेगा ओही दिन जोन दिन तो के आवे के बस नीचर के या तो अतवार के या तो दोनों दिन नतुलिक 29-30 अगस्तस तू आइए गवोन वहां पे जिया में और तू वहां पे तेर प्लेक Karta kinsa keiga met 50% korting. Dekh le to? Ek wa 50% jo dhaiga. Den ha gemeente aur Ujala milke bhariga. U dono milke ek del dek kariga aadha dus aur adhwa junto ke bhare ke baad soto kitna makla. Tu apan oye fas leke aiye en je koopt dat gewoon aan de

रहेगा, तो संजना भी रहेगा वहां पे। एक लड़की रहेगा स्टेज पे, तो स्लाथ देख लो इस दामस रानी ये सर भाई लाइफ ऑन स्टेज दोस्त रानी भी रहेगा। Heel veel dames hoor die ons steeds zullen zijn. Ik pooch er haar die schaarste thora raad van goede zangeressen. Maar etna dheer mooi mooi haiga zangeressen is uit. Leuk. Zij is erbij.

बड़ा सा फेस पे रहेगा रोशना भी तो ये खाना बड़ा सा फेस पे इंटरनल एंड स्कोर ये कार्ट इसे बहुत सस्ता हैगा दोस्तों सस्ता में किन ले 20 तारीख तक रहेगा सस्ता में एकदम दोस्तों खबोन अपन स्लाख मार दे ओके एंड है बात ना तू लग दी तो अंदर ही कतो

ये गीत जो है ना आप किसी के याद में भी सोच सकते हैं, चला सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए भी ये गीत है। कभी जम ना रहबे देख ले तो नारो उफर खातर में पर मोयर संजय। ऐसा ऐसा कलाकार हम लोग के बीच में आएगा सुनने वालों, और ऐसा ऐसा कलाकार भी वहाँ आई के रासा फेस्ट पे आपके खाती गाएगा, आपके मनोरंजन के खाते। और ये कलाकार जो है ना अपने लिए नहीं गाते, कभी नहीं, आपके लिए गाते हैं।

Beautiful. En dan gaan we naar deze toe, hoor. Totaal anders natuurlijk. Andere stijl. Maar het hoort allemaal bij ons. Waar, waar? Aple. Aple, sujal ke tamasa, sujal umrao. Surya ke saath, ye bhi rahege, yaar. Live on stage. En een heleboel danseressen. Na sujal ke saath khali. Met al die artiesten, met een heleboel artiesten. Maar sujal ke sange natuurlijk. Een heleboel danseressen erbij. Na ego, na duigo, na tingo. Een heleboel. Doe je. Het wordt tamasa, het wordt geweldig. Het wordt vuurwerk. Het wordt halchul. Doe je. Brasa fest. Yes. Sujal ke saath. Tu kahe na aaiye. Hame bol tu kahe na aaiye. Hi batia tu hame uitleg kar. Waarom zou je niet komen? Aap een Hindustani ke evenement pe. Ekdam bitter. To ke dar na haiga ki barish hoiga. O to kaha parkeer karabe. Veiligheid na mohiga. Na yaar. Ujala ke haiga. Tu janega. Hum log dil lagi na karila waan pe. कोई आएगा वहां पे रोत्सोई करे, कोई आएगा वहां पे कुछ करे, कोई बनमासी भी, वेल, तू जाने हम लोग के बात ही तो, तू जानेगा कि कैसे हम लोग इनक्राइब करे बे, दोस्त वहां पे एक को प्रॉब्लम ना हो सकेगा, और अगर कोई मांगी प्रॉब्लम करे भी, तू जानेगा कैसे हम लोग इनक्राइब करे बे, एक को दिल लगी ना, दोस्त तोर फैलखाई एकदम सेती, तोर गाड़ी ओतो जोन हैगा एकदम मोई से पार्केर करिए नेचर से तो के नहुफ खोजे के गली गली ना हवून इन द ब्यूटीफुल जिया इवेंट सेंटर भरल है जगह ओपन बार फरफूर से तू भी आ सके मापन ओतो से आ सकेगा देश भर में से दुस नी टैलेंट मेंस ऑफ देन हा नहीं तू देख ले गूगल अते इवन जस्ट द वेरफ नंबर 11 देख ले तो द वेरफ नंबर 11 जिया इवेंट सेंटर आदमी जोन सोचे तो कहाँ पे हैगा कैसे हैगा बहुत मोई हाल बहुत मोई लोकांसी अगर हम बोली ला बहुत सुंदर तो तू विश्वास कर ले हमसे आलर मोई तो सबसे मोई जगह एकदम सुपर द लुक्स वहां पे तो वही है हलचल कलक होई साथ है साथ सुजल के साथ

समैया समैया थोड़ा कमती बातो जो समी गनवा तो चापे ऊपर स्नान करे छा सुजल तो के हम लोग देखे बे लाइव ऑन स्टेज ना तू लग ब्रासा फेस्ट पॉइंट नल तू जाई के सिटी कल्ले अपन करता इस साइड करता जोन होएगा बहुत सस्ता दाम में मिलेगा दोस्तों जाई के कौन किन ले यार रिकल कल्ले चिजवा है वदाखी फन हम दान ये दे म्यूजिकांत खेलेगा दमिया भी Ai, ai, ai, ai. Hij mag niet ontbreken natuurlijk. Eén van de gezelligste zangers. On stage.

Mr. Black. Live on stage. Rasta Vesper. 29 en 30 augustus. Laatste weekend van augustus. Toke avik parier. Kaise tuna ye? Aur kahe tuna ye? Apan Hindustani ke evenement mein. Tuna ye? The kicker face pe jaiye. अगर तू हिंदुस्तानी के इवेंट में ना आई है तो कौन इवेंट में तू मांगे जाए कोरखाती स्पेशल गनहांग शहर में हिला देखो ये हम लोग सबसे बरका सबसे मोई सबसे खसाला खिफ़ेम उजाला के साथ उजाला वहां पे भी बनाएगा लाइव आउटस्टैंडिंग लाइव कार्यक्रम हम लोग बना बे फनाफन ब्रासा फेस्ट गनहांग के वेथहाउस जोन हैगा भी रहेगा बैल्क वहां पे हम लोग के आसपास और बरका बरका आदमी रहेगा नौया बरका बरका आदमी तू समझेगा हम का बोली ला तो जिनका दर्जा हैगा लव ऐसे हम बोली उस सब रहेगा वहां पे बड़ा सा फेस्ट पे और तू भी रही है यार तो हूँ थोड़ो कमती बात है तो क्या आवेक पड़ी और हम तो कह गो ब्रासा दे तू आइये हमें खोज लिए वहां पे हम रहबे हम कहो ना जाबे हम वे पे रहबे यार Mr. Black, या तो मोई गाना यार रहेगा भाई चली सुने ये कौन सी हैगा ये के हैगा हम बताई सकेला तो के निजाम वाकिद हुसैन द लेजेंड्स के साथ

0: लाइव ऑन स्टेज बड़ा सा फेस्ट पर यार तू ये समय कम है तो हम जाए ना जल्दी जल्दी नंद फॉल हंदर आई बोई एक अपना हमारे सही फॉर्मिनेचर मुका मुकेश लाइव ऑन स्टेज विद एक्सप्रेस एहू रहेगा यार नतुलक मुकेश
1: तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है
0: ओह यस
1: तुम्हें अपना बनाने की
0: तुम्हें अपना बनाकर हम रहेंगे यार
1: खाई है
0: बात खबर देना
1: आंखों में चाहत ही नजर आई है
0: En als je hem hoort zingen, hè, zou je bijna denken dat het iemand uit India moet zijn. Uit de Mumbai filmindustrie.
1: Shine like a star, shining so bright.
0: Maar gewoon Hamluk, ja, Hamluk eigen.

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनिक स्टेमें इन एन अनफॉरगेटेबल शो 19 सितंबर थिएटर द मीरवार में मौसमी ओबेरॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयका दत्तदीन एंड निजाम वागी दुसैन के साथ कॉपी टिकट्स ऑब्टेन्ड विया मीरवार.nl

0: सबको इसे बताते हैं। ओ तो मैं तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो, और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो। सवेरों का मेरे दिस इज उजाला रेडियो, योर साउंड योर फायर, फ्रॉम नेदरलैंड टू वर्ल्डवाइड, ऑलटाइम बाय यू। फॉलो ऑन्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, और चेक ऑन्स यूट्यूब कैनाल फॉर मोर वाइब्स। Samen maken we Ujala nog groter. Toe jaan het op Ujala Radio. Feel the energy. Ja, Brazafest. ADH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu... Nog 7 dagen te gaan voor Super Early Bird Stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Haarlem. Voor Overveen 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio.

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुटिया, फिर सदमे को झेलो, मजा ले लो।

से चेहरे, इन फूलों को गूंज के प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुमसे खेल रही है, तुम दुनिया से खेलो, मजा ले लो हाँ, घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा खेलो, ओ खेलो ओ खेलो, ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा खेलो, ओ खेलो ओ खेलो, ओ कल की बातें कल पे छोड़ो, आज मजा ले लो, मजा ले लो।